0: 他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫，沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾明的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
1: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。那么你把伊拉沃什么发那当？都这个的呀。不是阿妈，不是阿哥，阿妈好惨嘞。
0: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
1: 那个生意被提起来的几个，都是没得的。
2: 谁搞的？巴菲特。
1: 早上一批的那位子。
0: 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
2: Я бы только дан треть девятка, и тихо рейднер. Пурзо, что ты мне то, что карган хэчи не то. То, что карган бо отель. 93, вузга батка.
1: Вузга пачис батка.
2: Сайшта не вце, сакшн вазра бэт, мац бариш, джиз бариш. Не вса цубыр чиз, дзэн чиз то я вахт. Не ви сава дон.
1: Бафя, царан, дурман ахтия, царан.
0: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
1: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
0: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
1: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this. कैसे हैं भाई? ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई?
3: 300.
1: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे.
0: 讨价还价，控制成本是第二步。
1: I am nervous because it's not a small business.बहुत शुक्रिया आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
4: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
1: इस बीच
0: 与供货商的合作协议顺利签署。两箱芒果汁的样品摆上艾明的柜台。帕米尔高原。